माधव जी सात संग मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया सूखे कास हरिया रहाओ। जनन पिता लो सुत बंता कोई न किसकी तरिया, से संभा हेठा गुरु काहे मन पो करिया। उड़े उड़ा वे सको संग ते पासे भरे सरिया, तिन कवन खिलावे कवन जगावे मन में सिमरन करिया। सबन दान दा सस दान ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल सदबर जाइया तेरा अंत ना पारा वरिया। राग आसा महला चौथा सो उर्क क्यों ओंकार, सतगुर प्रसाद सो पुरन नजनार पुनण गमा गमा पारा। सब त्यावें सब त्यावें तो जी हर सच्चे सिनहारा, सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दतारा। हर दया वो संतो जी सब दू वसार नहारा, हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नान विजंत विचारा। तू कड़ कड़ अंतर सरमिंदर अंतर जी हरे को पुरख समाणा, एक दाते एक भिखारी जी सब तेरे जोज वडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिना वर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आप खाना। जो सेवै तो जी जा नानक तिन करबाणा। हर दया वे त्या वे तो जी से जान जुग में सुहवासी, से मोह से मोहत पै जिन हर त्याया जी तिन तुटी जम की फासी। जिन निर्भाओ जिन हर निर्भाओ त्याया जी तिनका पाओ सौ गवासी। जिन सेव्या जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर रू समासी। से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत पढ़ार जी परे बेअंत बेअंता, तेरे पग सलाह तो जी अनक अनेक अनंता। तेरी अनेक ते करे हर पूजा जी तब तापे जवे बेअंता। तेरे अनेक पड़े बहु सिमर सा जी कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत पले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरु परंपर करता जी तो जेवड़ा वरना कोई, तू जो जो एको सदाहदा तू एको जी तू हुने चल करता सोई। तोदे आपे पावे सोई वरते जी तू आपे करें सो होई। तोदे आपे से सब भाई जी तोदे आपे से सब गोई। जनान गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानू आसा महला चौथा। तू करता सचार मैडा साई जो तू भावे सोई थीसी, जो तू दे सोई ओ पाई रहाओ। साव तेरी तू सबनी त्याया, जिसनों कृपा करे ते नाम रतन पाया। गुरमहला दा मन मोगवाया तोदे आप विछोड़िया आया आप मलाया। तू दरियाओ सब तुझी माए, तो बिन दूजा कोई नाए। जी जन सब तेरा खेल बिजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनों तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सादी आप खाने। जिन हर सेव्या तिन सो पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा वर ना कोए। तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानू गुरम प्रगट होया सा महला पहला। तित
सरले भैले नवा सब हानी भाव तिन्ने किया पंगज मोह पग नहीं चाले हम देखा तै डूबी अले मन न चेस मूड मना हर बिसर तेरे गुण घड़िया रहा ना हो ज सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुहदा जन्म पया प्रणव नानक तिन की सरना जिन तू ना ही विसरिया आसा महला पंजवा पई प्राप्त मानुख ते हुरिया गोबिंद मिलन की है तेरी बरिया अवर का इधर किते ना काम मेरे साथ संत पाई के वंदा सरंजाम ला पाओ जल तरन के जन्म बिरथा जात रंग माया के रहाओ जप तप संयम धर्म ना कमाया सेवा साधना जानिया हर राया कहो नानक हम नीच करमा शरण परे की राखो शर्मा पातशाही दसवीं कव्यो आज मेहनती चो पई हमरी करो हाथ दर अच्छा पूर्ण होए जित की इच्छा ताव चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दो सवे तो काबो आप हाथ मोहे बचावो सुही बसे मोरो परवारा सेव से सबे करतारा मोर अच्छा नहीं कर दे करी है सब हरन को आज संगरी है पूर्ण होए हमारी आसा तोर पय की रहे प्यासा तो मैं शाड कोई आवर न त्याऊ हूं जो भर जाऊ तुम ते पाऊ सेवक से कमारे तारी है चौन जम सतर हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे अबरी है मरन काल का त्रास नवरी है वो जो सदा हमारे पच्छा सिरिया तो जो करियो रच्छा राह लियो मोय राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बन दुष्ट के हंता तुम हो पुरी चतुर्दास कंता काल पाए ब्रह्म अवतरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए करमे प्रकाशा सगल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो बेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जमन काल सब लोग सवारा नमस्कार है तने हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दया जशन अपजायो आदि अंत के अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार दिसी को हमारी सर पर जाजने आप सवारी सेवगन को सेवगन सो दियो सतरन को परमो बद कियो कड़कड़ के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पिशानत चीटी ते कुंचर अस्तूला सब पर कृपा दृष्टि कर फूला संतन दो पाए ते दुखी सो पाए साधन के सुखी एक एक ही पीर बिशाने कड़कड़ के पड़ पड़ की जाने जावद कर करां करता रहा पर जा तरता देह अपारा जाबा कर तो कब हूं तुम मैं मिलत देह तर सब हूं जेते बन से सब तारे आप अपने बोझो चारे तुम सब ही ते रहत नरालम जान बेभेद रियालम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद निदान आद संभ ताका मूड चारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा ताको कृपान अनुमानत महा मूड कर पे न जानत महादेव को कह सदा शिव निरंकार का चिन्ह न भेव आप अपनी बुद्ध है जेती बनना तिन्न भिन्न तो तेती तुमरा लखाना जाए पसारा के बसा प्रथम संसारा
ਏਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ ਰੰਗ ਪਿਓ ਰਾਵ ਕੈਂ ਪੂਪਾ ਅੰਡਾ ਜੈ ਰਸੇ ਤਜਕੀਨੀ ਉਤਪਜ ਖਾਨ ਬਹੋਰ ਰਚ ਦੀਨੀ ਕਹੂੰ ਬੂਰਾ ਜਾਹੂੰ ਬੈਠਾ ਕਹੂੰ ਸਿੰਘ ਪਿਓ ਸੰਕਰ ਕੈਠਾ ਸਾਰੀ ਸੇ ਦਿਖਾਏ ਅਚੰਭਵ ਆ ਜਗਾ ਸਰੂ ਸੇ ਅੰਭਵ ਆਵ ਰਚਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਿੱਖ ਅਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਰ ਦੋ ਜਿਤੇ ਉਠ ਤੋ ਪਾਤਾ ਸਗਲ ਮਲੇਸ਼ ਕਰੋ ਰਣਗਾਤਾ ਜਿਆ ਤੂੰ ਸਸਰਨੀ ਪਰੇ ਤਿਨ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਤ ਹੈ ਮਰੇ ਪੁਰਖ ਜਨ ਪਾ ਪਰੇ ਤਿਆਰੇ ਤਿਨ ਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਟਾਰੇ ਜੋ ਕਲ ਕੋ ਇੱਕ ਬਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈ ਪਰ ਅੱਛਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕਾਲਾ ਦੋਸ਼ ਹਰੀ ਟਰੇ ਤਦ ਕਾਲਾ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਤਨ ਜਾਏ ਨ ਹਰ ਹੋ ਤਾਂ ਕੇ ਤਾਪ ਤਨਗ ਮੈਂ ਹਰ ਹੋ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਕਰਮੂ ਸਭ ਹੋਈ ਦੋ ਸਵੈ ਸਹਿ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਾਰ ਜਿਨ ਤੁਮੇ ਸੰਭਾਰਾ ਕਾਲ ਫਾਂਤੇ ਤਾਏ ਉਬਾਰਾ ਜੇ ਨਰ ਨਾਮ ਤਿਆਰੋ ਕਹਾ ਦਾਰ ਦੂ ਦੋ ਤੇਰਾ ਖੜਗ ਕੇ ਤਮੈ ਸਰਨ ਤਿਹਾਰੀ ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਲਿਓ ਅਬਾਰੀ ਸਰਵ ਡੋਰ ਮੋਹ ਸੁਹਾਈ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋ ਤੇ ਲਿਓ ਬਚਾਈ ਸਵਈਆ ਪਾਏ ਗਏ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਤਰੇ ਨੀ ਆਨਿਓ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਣ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕਹੇ ਮਤੇ ਕ ਨ ਮਾਨਿਓ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬੇ ਸਬੈ ਬਹੁ ਭੇਦ ਗਿਆ ਮੇਘ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਹੋ ਸਭ ਤੋਏ ਬਖਾਨਿਓ ਦੋਹਰਾ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਹੋ ਤੁਮਾਰੋ ਦੁਆਰ ਬਾਹ ਗਏ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦਾਸ ਤੁਹਾਰ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਕਿਉ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੇ ਆਈਆਂ ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਓ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਹਰ ਨਾ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੂਸਾ ਵਿਸਾਰਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਰ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ ਸਭਨਾ ਗਲਾਂ ਸਮਰਾ ਸਵਾਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰੇ ਕਰਦਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛੁ ਹੈ ਜੇ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਫਸਲਾ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਗਨੇਰੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾਂ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ ਜੇ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰੀ ਆ ਪੰਜ ਦੋ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਡਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਜਿਨ ਕਹੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸੁਖੋ ਆਤੇ ਤਿਖਾਰੇ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਪਾਗੀਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ ਦੋਹਰੋ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ
ਸੁਣੇ ਸੱਚੇ ਬਾਣੀ।

कु सुगंध तेह मेल तेउ उत्तम पे लो काठ निर्गंध कबीर पारस चंदन तिन है एक सुगंध तेह मेल तेउ उत्तम पे।

सतनाम श्री वाहिगुरु जी। ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी सो कहो टल गुरु सेवी है। ऐने सह सुभाए, दर्शन परस्यां गुरु का, जन्म मरण दोह जाए। वाहिगुरु साहिब जी तनासरी महला पंजवा। जिसका तन मन धन सब तिसका, सोई सुगड़ सजानी, तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा, तो बेदनी की खटानी।

जाचक एक शरणा, मिले दान संतरेण, जे लग पव जल तरना। बिनत कराऊं अरदास सुना, जे ठाकुर पावे देह दर्श मन चाओ। भगत एह मन ठहरावे, बड़े चिराग अंधियार में, सब कल उधरी एक नाम धर्म। प्रगट सगल हर पवन में, जन नानक गुर पार ब्रह्म। धन वाहिगुरु साहिब जी, राग सूही महला पंजमा।

मिथन मोह अगन शोक सागर कार कृपा उधार हर नागर चरण कमल शरणाय नारायण दीनानाथ भगत परायण रहाओ अनाथानाथ भगत भय मेटन

नानक तिस बिन अवर ना कोई, आद मद अंत प्रभ सोई। नानक तिस बिन अवर ना कोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राग सूही महला पंजवां कर तीजा। एक ओहंकार सत गुर प्रसाद मिथन मोह अगन शोक सागर, कर कृपा उधार हर नागर। धन वाहिगुरु साहिब जी, धन वाहिगुरु साहिब जी। धन वाहिगुरु साहिब जी। धन वाहिगुरु साहिब जी।

पानी अग्नि का मेल। चंचल चपल बुद्ध का खेल, नौ दरवाजे दसवां द्वार, बुझ रे ज्ञानी ये विचार, कथता बकता संता सोई, आप बिचारे सो ज्ञानी हो ही रहा, देही माटी बोले पौन, बुझ रे ज्ञानी मुआ है कौन, मुई सुरत बाद अहंकार, ओ नाम हुआ जो देखन हार, जय कारण तट तीर्थ जाहे, रतन पदार्थ काट ही माहे, पाड़ पाड़ पंडित बाद बखाने, पीतर होंदी वस्त न जाने, हो ना मुआ मेरी मुई बड़ाए, ओ ना मुआ जो रे आसमाए, कहो नानक गुरु ब्रह्म दिखाया, मरता जाता न धरना आया, गौड़ी महला पहला दखनी, सुन सुन बूझे माने नाओ, ताके साध बलिहारे जाओ, आप भुलाए ठौर ना ठाओ, तू समझावे मेल मिलाओ, नाम मिले चले मैं नाल, बिना वे बांधी सब काल रहा, खेती वणज नावे की ओट, पाप पुन बीज की पोट, काम क्रोध जी में चोट, नाम विसार चले मन खोट, साचे गुर की साची सीख, तन मन शीतल साच परीख, जाल पुरायन रस कमल परीख, शब्द रत्ते मीठे रस ईख, हुकम संजोगी गढ़ दस द्वार, पंच वसै मिल जोते अपार,

सहजे आवे सहजे जाए, मन ते उपजे मन माए समाए। गुरमुख मुक्तो बंध न पाए, शब्द विचार छुट्टे हर नाए। तरवर पंखी बौ निसबासु, सुख दुखिया मन मो विनासु। सांझ बिहाग तकै आगाशु, तहां दिस धावै करम लिखियासु। नाम संजोगी कोयल थाट, काम क्रोध फूटे बिख माट। बिन वखर सुनो कर हाट, गुर मिल खोले भजर कपाट।

있다. वाह सच्चे मैं तेरी टेक हूँ पापी तो निर्मल एक रहाओ अगन पानी बोले पड़वाओ जिवा इंद्री एक सुहाओ दृष्ट विकारी नाही पो पाओ आ मारे ता पाए ना हो

सतगुर मिले ता दुविधा भागै, कमल विगास मन हर प्रभ लागै, जीवत मरै महारस आगै। सतगुर मिले सच संजम सूचा, गुर की पौड़ी ऊचो ऊचा, करम मिले चमका पहुमूचा। गुर मिले अंक समाया, कर कृपा कर महल दिखाया, नानक हमें मार मिलाया। गौड़ी महला पहला, किरत पया न मिटे कोए, क्या जाना क्या आ गए हुए। जो तिस भाणा सोई हुआ, अवर न करने वाला दुआ, ना जाना कर्म के उड़ तेरी दात, कर्म धर्म तेरे नाम की जात। रहा

आनंद जिन पाया गुर देख दिखाया, आसा मां निराश बुझाया। दीना नाथ सर्व सुख दाता, नानक हर चरणी मन राता। गौड़ी चेती महला पहला।

तू काया मैं रुलदी देखी ज्यों तारी उपर शारू सुन सुन सिखिया मारी सो कृत कीता रसी मेरे जीड़े बढ़ ना आवे वारी रहाऊ। हाँ तो दे आखा मेरी काया तू सुन सिख हमारी निंदा चिंदा करे पराई झूठी ला इतबारी। वेल पराई जो है जीड़े करें चोरी बुरियारी हंस चले आ तो पिछे रही छुट्टड़ हुई नारी।

कार चोरी में जा किस लिया, ता मन पड़ा पाया। हलत ना शोभा पलत ना टोई, अहला जन्म गवाया। हो खरी दुहेली होई, बाबा नानक मेरी बात न पूछे कोई। रहा

नमः उच्चरमनम्। आगे जामदाड़ बिखम कना रहाओ, उसार मडोली राखे द्वारा, पीतर बैठी साधना, अमृत केल करे नित कामन, अवर लुटेन सो पंच जनम।

मछली होवा जाल बसा जी जंत सबसार उरवार पार मेरा शामिल है हो मिलो की बाह पसार।

गौड़ी पूर्वी दीप की महला पहला एको ओंकार सत गुर प्रसाद जय कर कीर्ति आखिए करते का होय विचारो तित कर गावो सोहिला सिवरियो सृजनहारो। तुम गावो मेरे निर्भव का सोहिला हम वारी जाओ जित सोहिले सदा सुख होय रहाओ। नित नित जीड़े संभालियन देखेगा देवनहार त्रिदाने कीमत ना पवै तिस दाते कवन शुमार। संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देव सजने आसी सड़िया ज्यों होवे साहिब स्यों मेल।

महला तीजा चौपदी। एक ओहकार सत गुर प्रसाद, गुर मिले हर मेला होई, आपे मेल मिलावे सोई।

सुनामते आई, दर्शन सच्चे सच्ची पात होई। कृष्णो कहिए दाता एक सोई, कृपा करे शब्द मिलावा होई। मेल प्रीतम साचे गुण गावा, नानक साचे साच समावा। गौड़ी ग्वारे रीमा लाती जा, सो थाओ साच मन निर्मल होए। साच निवास करे साच सोए, सच्ची बाणी जुग चारे जापे। सबके साच आया पे आपे, कर्म होवे सत्संग मिलाए। हर गुण गावे बैस सो थाए रहाओ। जड़ोए जेवा दूजे पाए, हर रसना चाखे फीकाया लाए। बिन बूझे तन मन फीका होए, बिन नावे दुखिया चलिया रोए।

साची बाणी शब्द विचार। गावत रहे जे सतगुर पावे, मंतन रता नाम सुहावे, रहाओ एक गावे एक भगत करे, नाम न पावे बिन असने। सची बाणी सची भगत गुर शब्द प्यार, अपना पर रखे आस्था और तार।

लग सूरतन संग्राम रण में छुटे पुराण, लग सुरती लग ज्ञान ध्यान बढ़िया पाठ पुराण, जिन करता करना किया लिखिया आवन जान, नानक मत्ती मिथिया।

0: जस कुतावना होई, तू करता करना मैं नहीं जाहू करी ना होई। मलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई रखिया रहाओ। जात मैं जोत, जोत मैं जाता अकल कला भरपूर रहा। तू सचा साहिब सिबत सवाले हो जिन कीती सो पार पिया। कौ नानक करते किया बाता ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ।
1: ਜੋਗ ਸਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸਬਦੰ ਵੇਦ ਸਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਸਬਦੰ ਸੂਰ ਸਬਦੰ ਸੂਦਰ ਸਬਦੰ ਪਰਾਕਿਰਤ ਹੈ। ਸਰਬ

0: श्लोक महला पहला। गौ ब्राह्मण को कर लावे गो बर्तन ना जाए, धोती तो टिका तय जप माली तान मलिशा खाई, आंतर पूजा पढ़े कते बाल संजम तुरका पाई, शो डीले पखंडा नाम लिए जाए तिरंगा महला पहला।
1: मानस काने करे निवास श्री विगायन तिन गलता, तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद उना भी आवे उई साध, कूड़ी रास कूड़ा वबार कूड़ बोल करे आहार, सर्म धर्म काडे राधूर नानक कूड़ रहा प्रभूर, मत्था टिका तेड़ धोती तो खाई, हाथ श्री जगत कसाई, नील वस्त्र पैर हुए प्रवान, मलेश धानले पूजे प्राण, आप आख्या का गुठा बकरा खाना, चौके ऊपर किसे न जाना, देख के चौका कंडी कार ऊपर आए बैठे कुड़े यार, मत भी टहवे मत भी टह।

सा शिवजी कृपा करहु दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना बिचारु कोई। माटी का क्या धोपै स्वामी, मानस की गत एही। फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो सरनाय। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगती लाय। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाह दशा। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसा। वाहिगुरु साहिब जी, राग सुही महला पंजवा, घर तीजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद, मिथन मोह अगन शोक सागर। कार कृपा उधार हर नागर।

चरण कमल सरनाए नारायण, दीनानाथ भगत परायण, रहाउ अनाथानाथ भगत पै मेटन, साध संग जामदूत ना भेटन।

तौ प्रसादी कुलिए लोक करत विकार बिखड़े प्रभ नेर हूं ते नेरे बिनवंत नानक दया तारो काट पव जल फेरिया।

परम सम्मान योग जुगो जुगे अटल। चवर शतर सिंहासन दे मालक वाली कुल आलम सर्वरे कायनात शब्द ब्रह्म सतगुरु, धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी, तिना दी पावन पवित्र मुबारक गोद अंदर जुड़ बैठे अते चैनल मीडिया दे राही घरां विच बैठ के साहब जी दी पावन अमृतमयी मुबारक बाणी नाल सांझ बना रहे गुरु प्यारे गुरु सवारे अति सत्कारयोग सत्संगी जनों, वडभागे हां जिथे आप जिया ने गुरु दर दे सत्कारत कीर्तनी जिथे पासों इलाही बाणी दे शब्द कीर्तन सरवण कीते ने। आओ कुछ घड़ियां सतगुरां दी पावन मुबारक बाणी दी विचार नाल जुड़न दा यतन करिए। गुरमत विचारां दी आरंभता करन तो पहला गुरु दर दी असूलन मर्यादा नूं बहाल करदिआं पावन गुरु फतेह नाल सांझ बनाईए आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। रोजाना ही इन्हां दीवानां दे विचों आप जी जो लड़ीवार गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन बाणी दी कथा विचार चलदी है तिस नाल सांझ बनाउण दा उपराला करदे हो। इस लड़ी दे तहत 322 नंबर अंक दे उत्ते पंजवें पातशाह गुरु अर्जन साहिब जी दी रसना तों उचारण कीती हुई गौड़ी की वार तेस दी 19 नंबर पौड़ी नाल संबंधित दो श्लोकां दा पाठ दास ने आप संगतां दे नाल सांझा कीता है पाठ रूप विच। बाबा गुरु अर्जन साहिब महाराज दोहे था बाणी का बोहे था, जिन्हां दे अंदर निम्रता संजीदगी गंभीरता आत दर्जे दी है। हजूर महाराज दा लेखणी दा ढंग, महाराज दा बाणी उचारण करन दा अंदाज, हजूर महाराज दा घटनाक्रम नूं समझना ते उहदे उत्ते अपना फैसला सुनाउणा, जदों तुसीं गुरु अर्जन साहिब महाराज दे जीवन नूं उहनां दे इतिहास नूं वाचोगे उहनां दी गुरबाणी नूं वाचोगे ते उहदे विचों सारियां वनगियां झलक रूप दे विच साडे सामणे आउंदियां जिथे वह हर गल का क्रैडिट जिहड़ा है उस अकाल पुरख वाहगुरु नूं देख के कहणगे महाराज जे तू आ काम ना करदा ते मेरे वस विच नहीं सी। बड़े वड्डे कीर्तिमान जिहड़े सन सतगुरु गुरु अर्जन साहिब महाराज ने अपने जीवन काल दे विच स्थापित ईवन जिहड़ी दसवंध की माया गुरद्वारियां च आउंदी सी उहनां दे नाल महाराज ने अरब दे मुल्कां दे विच सिखां नूं घोड़ियां दा व्यापार करन लई भेजना, मसंद प्रथा कायम करनी, दरबार साहब की इमारत जिहदा टक चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज ने लाया सी ओह दरबार साहब की आलीशान इमारत आप तैयार करवानी और उहदे नाल संबंधित जिहड़ा सरोवर है उहदी उसारी करके ते नाम अमृतसर रखना। यह पंजवें पातशाह महाराज के हिस्से में आया।

पावे जियो द्वितीया पाओ विपरीत अनित दासा नह पावे जियो दासा नह पावे बिन दरसावे इखिन तीरज क्यों करे ना बिहुना तन मन हिना जल बिन मछली ज्यो मरे मिल मेरे प्यारे प्राण अदारे गुण सासंग मिल गावे नानक के स्वामी तार अनुग्रह मन तन अंक समावे डखना सो हंदड़ो हब ठाए कोई ना दिसे डूजड़ो खुलड़े कपाट नानक सदगुर पेड़ते छंत तेरे बचन अनूप पार संतन आधार बाणी विचार ये जियो सिमरत सास गिरास पूरन विश्वास क्यों मन हो विसार ये जियो क्यों मन हो बिसारिय निमख नहीं टारिय गुणवंत प्राण हमारे मन बाछंत फल देत है स्वामी जी की बिरथा सारे अनाथ के नाथे सर्ब कैसा थे जब जुए जन्म ना हारिय नानक की बिनंती प्रपे कृपा करपव जल तारिय डखना तूड़ी मज्जन साध खे साई थिये कृपाल लद्दे हब्बे थोकड़े नानक हर तन माल छंत सुंदर स्वामी ताम पगते विश्राम आसा लग जीव ते जियो मन तन्ने गलतान सिमरत प्रभ नाम अमृत पीवते जियो अमृत हर पीवते सदा थिर थीवते बिखे बन फीका जान्या पहि कृपाल गोपाल प्रभ मेरे सा संगत निद मान्या सर्वसो सुख आनंद कन प्यारे हर रतन मन अंतर सीवते एक तिल नहीं विसरे प्राण आधारा जप जप नानक जीव ते डखना जो तन किने अपने तिनाकु मिल क्यो हे आपे ही आप मोहे ओहो जस नानक आप सुनयो हे छंत प्रेम ठगुरी पाए रिजाए गोविंद मन मोहे आजियो संतन कै प्रसाद अगाध कंठे लग सोहे आजियो हर कंठ लग सोहया दोख सब जोहया भगत लखियन करवस पए मन सर्ब सुख बुठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए सखी मंगलो गाया इच्छ पुजाया भोड़ना माया होया कर गे लीने नानक प्रभ प्यारे संसार सागर नहीं पोहया डखना साई नाम अमोलक कीम ना कोई जान दो जिना भाग मथाहे से नानक हर रंग मान दो छंत कह दे पवित्र सुन दे सब तन लिखती कुल तारिया जियो जिनको साधु संग नाम हर रंग तिनी ब्रह्म विचारिया जियो ब्रह्म विचारिया जन्म सवारिया पूर्ण कृपा प्रभ करी कर गे लीने हर जसो दीने जो ना तावे नह मरी सतगुर दयाल कृपाल पेटत हरे काम क्रोध लोभ मारिया कथन न जाय अकथ स्वामी सद कै जाए नानक वारिया श्री राग महला चौथा वणजारा एक ओंकार सत नाम गुर प्रसाद हर हर उत्तम नाम है जिन सिरिया सब कोई जियो हर जी सबे प्रतपाल दा कट कट रमैया सोए सो हर सदा त्याय तिस बिन अवर ना कोए जो मोहे माया चित लाय दे से छोड़ चले दुख रोए जन नानक नाम त्याया हर अंत सिखाई होए मैं हर बिन अवर ना कोए हर गुण सरनाई पाईए वणजारिया मित्रावट भाग प्राप्त होए रहाओ संत जना विण पाईया हर किने ना पाया नाओ विच हो मैं कर्म कमाओ दे ज्यो वेसुआ पुत निनाओ पिता जात ता होइए गुर तूठा करे पसाओ वड भागी गुर पाया हर एनस लगा पाओ जन नानक ब्रह्म पछाणिया हर कीरत कर्म कमाओ मन हर हर लगा चाओ गुरपुरे नाम दृढ़ाया हर मिले हर प्रभ नाओ रहाओ जब लग जो बनसास है तब लग नाम त्याए चलद्या नाल हर चलसी हर अंते ले छाए हो बलिहारी तिन को जिन हर मन वुठा आए जिनी हर हर नाम ना चेत्यो से अंत गए पछुताए तुरमस्त

तेरा धन भी तेरा, तू ठाकुर स्वामी परम मेरा, जियो पिंड सब रास तुम्हारी, तेरा जुर्ग पाला जियो सदा सदा, तू है सुखदाई निव निव लागा, तेरी पाई कर कमावा जी तुद भावा, जा तू देह दयाला जियो, प्रभ तुम ते लहना तू मेरा गहना, जो तू देह सोई सुख सहना, जिथे रखे बैकुंठ ते थाई तू सभना कहे प्रतिपला जियो, सिमर सिमर नानक सुख पाया, आठ पहर तेरे गुण गाया, सकल मूर्त पूर्ण होए कदना होई दुखाला जियो, माज महला पंजमा पा ब्रह्म प्रभ मेघ बठाया, जल थल मैयल दह दिस बरसाया, शांत भई बूझी सब तिसना, अंध भया सब ठाई जियो, सुख दाता दुख भंजन हारा, आपे बख्श करे जी सारा, अपने कीते नूं आप प्रित पाले, पै पैरी ते सह मनाई जियो, जा की सरन पया गत पाईए, साह सास हर नाम तिहाई है, तिस बिन होर नाही ना दूजा, ठाकुर सब तिसे किया जाई जियो, तेरा मान तान प्रभ तेरा, तू सचा साहिब गुणी गहेरा, नानक दास कहे बिनाती, आठ पहर तो तिहाई जियो, माज महला पंजमा सबे सुख पाए, परबन तूठे गुरपूरे के चरण मन उठे, सहज समाध लगी लेवे अंतर, सो रस सोई जाने जियो, अगम गोचर साहिब मेरा, घट घट अंतर वरते नेरा, सदा अलिपत जिया का दाता, को विरला आप पछाणे जियो, प्रभ मिलने की ए निशानी, मन इको सच्चा हुक्म पछाणी, सहज संतोख सदा तृप्ता से, अंध खसमे के पाणी जियो, हथी दिती प्रभ देवन हारे, जन मरण रोग सब निवारे, नानक दास किए प्रभ अपने, हर कीर्त रंग माणे जियो, माज महला पंजमा कीनी दया गोपाल गसाई, गुर के चरण वसी मन माही, अंगीकार किया तिन करते, दुख का डेरा ढहया जियो, मन तन वसिया सचा सोई, बिखड़ा थान न दिसै कोई, दूत दुश्मन सब सजन होए, एको स्वामी आहया जियो, जो किछ करे सो आपे आपै, तुद बुद्ध सियाणप किछ न जापे, अपने संतां नूं आप सुहाई, प्रभ भरम भुलावा लहया जियो, चरण कमल जन का अधारू, आठ पहर राम नाम पारू, सहज आनंद गावे गुण गोविंद, प्रभ नानक सर्ब समाहया जियो, माज महला पंजमा सो सच मंदर जित सच तिहाई है, जो सो रिदा सुहेला जित हर गुण गाई है, सा धरत सुहावी जित वसै हर जन, सचे नाम विटों कुरबाणे जियो, सच वढाई कीमना पाई, कुदरत कर्म न कहना जाई, त्याए त्याए जीवे जन तेरे, सच शब्द मन मानो जियो, सच सलाहण वडभागी पाई है, गुरप्रसादी हर गुण गाई है, रंगर ते तेरे तुद भावे, सच नाम निसाणो जियो, सचे अंत ना जाने कोई, थान तनंतर सचा सोई, नानक सच त्याई है, सद ही अंतर जामी जाणो जियो, माज महला पंजमा रैण सुहावनी, दिन सुसुहेला जप अमृत नाम, संत संग मेला घड़ी, मूर्त सिमरत पल वंज है, जीवन सफल तथाई जियो, सिमरत नाम दोख सब लाथे, अंतर बाहर हर प्रभ साथे, पै पौ परम खोया गुरपूरै, देखा सभनी जाई जियो, प्रभ समरथ वड उज पारा, नौ निध नाम परे भंडारा, आद अंत मद प्रभ सोई, दूजा लवे न लाई जियो, कर कृपा मेरे दीन दयाला, जलक जाचे साधर वाला, देह दान नानक जन मांगे, सदा सदा हर त्याई जियो, माज महला पंजमा ऐथे तू है आगे आपे, जी जंत्र सब तेरे थापे, तुद बिन अवरना कोई करते, मैं तर उड़ तुम्हारी जियो, रसना जप जब जीवै सुमारी, रसना जप जप जीवै स्वामी, पार ब्रह्म प्रभ अंतर जामी, जिन सेव्या तिन्ही सुख पाया, सो जन्म न जुवै हारी जियो, महा नाम औखद जिन जन तेरे पाया, जन्म जन्म का रोग गवाया, हर कीर्तन गावो दिन राती, सफल एहा है कारी जियो, दृष्ट धार अपना दास वारिया, घट कर अंतर पार ब्रह्म निम सकारिया, एक सविण होर दूजा नाही, बाबा नानक एह मत सारी जियो, माज महला पंजमा मन तन लता राम प्यारे, सरबस दीजे अपरा वारे, आठ पहर गोविंद गुण गावियै, आठ पहर गोविंद गुण गाइए, बिसरना कोई सासा जियो, सोई साजन मीत प्यारा, राम नाम सालत साध संग विचारा, साधु संग त्रीजै सागर कटिए, चमका फासा जियो, चार पदार्थ हर की सेवा, पार जात जप अलक भेवा, काम क्रोध किलवे गुर काटे, पूर्ण होई आसा जियो, पूर्ण भाग भए जिस प्राणी, साध संग मिले सारंग पाणी, नानक नाम वसिया जिसे अंतर प्रवाण, गृहस्थ उदासा जियो, माज महला पंजमा सिमरत नाम हृदय सुख पा

लगे सुमुखता इंद्री बस सत संजम जुगता गुर के शब्द सदा हर त्याए यह भगत हर पवनिया गुरमुख भगत जुग चारे होई होरत भगत ना पाए कोई नानक।

सच्चे नाए दुख कभी नहीं, सुख दाता सेवन सुख पाए न गुरमत मन बसावणिया। हो वारी जियो वारी, सुख सहज समाद लग।

के फेरा जा तुद पावे तो नायर चावे तू आपो नाओ जपावनिया गुरमति हर मन बसाया हर सोग सा मोह गवाया एक

रे सदा आनंद रहे दिन राती गुण के गुणी समा बनिया हो वारी जी हो वारी नाम सुन मन वसा बनिया हर जी।

सतगुर सेव सदा सहगण सच उपदेश समावणिया शब्द वसारण तिन्ना ठौर न ठाओ परम पुल जो सुंजे कर गाओ हालत पालत तिन दोवे गवाए दुखे दुख बिहावणिया लिखदिया कागद मसख होई दूजे पाए सुख पाए न कोई कूड़ लिखे ते कूड़ कमावे जल जावे कूड़ जित लावणिया गुरमुख सचो सच लिखे विचार से जन सच्चे पावे मुख द्वार सच कागद कल

मैं लागी गुर शब्दी होवे, मन निर्मल आन दिन भगती राता, भगत करे हर पावनिया। हो वारी जी हो वारी आ, भगत करन अवरा भगत करावनिया। तिन भगत जना को सद नमस्कार कीजे, जो आन दिन हर

बद भाई सतगुर आपे मिल मलाए मिल प्रीतम सुख पावने एक कूड़ लागे कूड़े फल पाए दूजे पाए व्यर्थ जन्म गवाए आप डूबे सकल कुल डूबे कूड़ बोल बिख खावने इस तन में मन को गुरमुख देखे पाई भक्त जाहू मैं सुख सिद्ध साधक मोन तारी रहे लिवलाए तिन पी तन में माना दिखावने आप कराए करता सोई होर के करे की ते क्या होई नानक जिस नाम देवे सोली।

आपे गोद प्रगट है आपे गुर शब्दी आप बजावने आ हो वारी जियो वारी अमृत नाम वसावने आ अमृत नाम महारस मीठा गुरमति अमृत प्यावने आ रहाओ होमे मार बजर कपाट खलाया नाम अमोल गुर प्रसादी पाया बिन शब्द नाम न पाए कोई गुर कृपा मन वसावने आ गुर ज्ञान अंजर सच नेत्री पाया अंतर चानन अज्ञान अंधेर ग

गुरमुख मिले मलाई आपे, काल न जो है दुख न संतापे, होमे मार बंधन सब तोड़े, गुरमुख शब्द सहावने आ, हो वारी जियो वारी, हर हर नाम सहावने आ, गुरमुख गावे गुरमुख नाचे, हर से तीज तलावने आ रहाओ, गुरमुख जीवे मरे परवाने, आर्जन सीजे शब्द पहचान, गुरमुख मरे न काल न खाए, गुरमुख सच समावने आ, गुरमुख हादर सोबा पाए, गुरमुख विचों आप गवाए, आप तरे कुर सगले तारे, गुरमुख जन्म सवारने आ, गुरमुख दुख कदे न लगे शरीर, गुरमुख हो मैं चूके पीर, गुरमुख मन निर्मल फिर मेल न लागे, गुरमुख सहज समावने आ, गुरमुख नाम मिले बड़े आई, गुरमुख गुण गावे सोबा पाई, सदा आनंद रहे दिन राती, गुरमुख शब्द करावने आ, गुरमुख आंदन शब्द राता, गुरमुख जुग चारे है जाता, गुरमुख गुण गावे सदा निर्मल, शब्द भगत करावने आ, वाज गुरु है आंद अंधारा।

है मुक्त सदा मुक्त आपे है सच्चा आपे लख लखावणे आपे माया आपे छाया आपे मोह सब जगत पाया आपे गुण दाता गुण गावे आपे आख सुनावणे आपे करे कराए आपे आपे थाप थापे आपे तू ते बाहर कछु ना होवे तू आपे कारे लावणे आपे मारे आप जीवाए आपे मेले मेल मिलाए सेवा ते सदा सुख पाया गुरमुख सहज समावणे आपे ऊंचा ऊंच होई जिस आप बिखाले सो वेखे कोई नानक नाम बसे कट अंतरे आपे वेख बखालने माज महला तीजा मेरा प्रभ भरपूर रहा सब थाई गुर प्रसादी कर ही मैं पाई सदा सरे भी एक मन त्याई।

के नानक जिस नजर करे सो पाए, कर कृपा मन वसावने आ। माज महला तीजा हर आपे मिले सेव कराए, गुर के शब्द पौ दूजा जाए हर निर्मल।

सदा है निर्मले गुर शब्दी मन बसावन आर हाउ आपे गुरदाता करम विदाता सेवक सेवे गुरमुख हर जाता अमृत नाम सदा जन सो है गुरमत हर रस पावन आ इस गुफा में।

कृपा करे तो सतगुर पेटे नदरी मेल मलावने आ, दूजे पाए पढ़े नहीं बूझे त्रैविद माया कारण लूजे त्रैविद बंधन टूटे गुर शब्दी मुक्त करावने आ, इह मन चांचल वस न आवे दुविधा लागे दै दिसतावे बेहका कीड़ा बिख में राता बिख ही माहे पचावने आ, हो करे ते आप जनाए।

भाई फिर आही मनमुख जन्म गया है वृथा, अंत गया पछतावनिया। फिर परदेस सिंगार बनाए, मनमुख अंध ऐसे कर्म कमाए। हालत न शोभा पलत न टोई, वृथा जन्म गवावनिया। हर का नाम किन विरले जाता, पूरे गुर के शब्द पछाता। आन दिन पद करे दिन राती, सहजे ही सुख पावनिया। सामे वारते एको सोई, गुरमुख विरला बूझे कोई। नानक नाम रते जन सो है, कर कृपा आप मिलावनिया। माज महला तीजा, मनमुख पड़े पंडित कहावे। दूजे पाए महा दुख पावे, बिखिया।

हर मन बसिया हर सहज पिया बनिया रहो वेद पढ़े हर रस नहीं आया बाद बखाने मोहे माया अज्ञान मति सदा अंधियारा गुरमुख बूझ हर गवनिया कतो कथिए शब्द सहावे गुरमति मन सचो पावे सचो सच रवे दिन राती यह मन सचन गावनिया जो सच रते दिन सचो पावे आपे देन पछतावे गुर के शब्द सदा सच जाता मिल सच्चे सुख पावनिया कूड़ कोस्त न मेल न लागे गुर प्रसादी आंदिन जागे निर्मल नाम बसे कट भीतर ज्योति ज्योत मिलावनिया त्रै गुण पड़े हर तत् न जाने मूलो भूले गुरु शब्द न पछाने मोह व्यापे के सूझे नाही गुरु शब्दी हर पावनिया वेद पकार त्रै विद माया मनमुख न बूझे दूजे पाया त्रै गुण पड़े हर एक न जाने।

निर्गुण सरगुण आपे सोई, तत पछाणे सो पंडित होई, आप तरे सगरे कुल तारे, हर नाम मन बसावनिया, हो वारी जियो वारी, हर रस चख साद पावनिया, हर रस चख के सीजन निर्मल, निर्मल नाम तियावनिया, रहाओ सो नह कर्मी जो शब्द विचारे, अंतर तत ज्ञान होमे।

गुर प्रसाद मिटिया अंधियारा कट चानन आप पछानन आ आप पाए ते आपे वेखे सतगुर सेवे सोजन लेखे नानक नाम बसे कट अंतर गुर कृपा ते पावन आ माज महला तीजा माया मोह जग

काम क्रोध पसरिया संसारे आए जाए दुख पावनिया तिस विच ज्ञान रतन इक पाया गुर प्रसादी मन वसाया जासा संजम सच कमावे गुर पूरे नाम त्यावनिया पई अड़े तन भरम पलानी दूजे लागी फिर पछतानी हालत पालत दोवे गवाए सुपने सुख न पावनिया पई अड़े तन कंत संभाले गुर प्रसादी वेखे नाले फिर कै सहज रहे रंग राती शब्द सिंगार बनावनिया सफल जरम जिना सतगुर पाया दूजा पाव गुर शब्द जलाया एको रव रेहा कट अंतर मिल सत संगत हर गुण गावनिया सतगुर ने सिवे सुकाहे।

मति आवनिया तिस रूप न रेखिया घट घट देखिया गुरमुख लख लिखावनिया रहाओ तू दयाल कृपाल प्रभ सोई तुझ बिन दूजा अवर न कोई गुर

प्रीत मेरे तुद बिन अवर न कोई जाचा गुर प्रसादी तू पावन आ अगम गोचर मित नहीं पाई अपनी कृपा करे तू लह मल्ला।

पहला पंजमा कौन सो मक्ता कौन सो जुगता कौन सो ज्ञानी कौन सो भक्ता कौन सो गिरही कौन अदासी कौन सो कीमत पाए जियो किन विद बाधा किन विद छूटा किन विद आवन जावन तूटा कौन कर्म कौन नह कर्मा कौन सो कहे कहाए जियो कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया कौन सो सनमुख कौन बेमुखिया किन विद मिलिए किन विद विशरे ए विद कौन प्रगटाए जियो कौन सो अखरजित तावत रहता कौन उपदेशित दुख सुख सम सहता कौन सो चाल चित पार ब्रह्म त्याए किन विद कीर्तन गाए जियो गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता गुरमुख ज्ञानी गुरमुख भक्ता तन गिरही अदासी गुरमुख गुरमुख कीमत पाए जियो होमे बाधा गुरमुख छूटा गुरमुख आवन जावन तूटा गुरमुख कर्म करे गुरमुख नह कर्मा गुरमुख करे सो सवाए जियो गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया गुरमुख सनमुख मनमुख बेमुखिया गुरमुख मिलिए मनमुख बिछड़े गुरमुख वेद पलटाए जियो गुरमुख अखरजित आवत रहता गुरमुख उपदेश दुख सुख सम सहता गुरमुख चाल जित पार

देवन हैरा भक्ति पाए परे भंडारा दया तार राखे तुद से ही पूरे कर्म समावनिया अंधकूप ते कंडे चाड़े कर कृपा दास दन आले गुण गावे पूर्ण अवनासी कै सुन तोट न आवनिया एथे ओथे तू ही रखवाला मात गर्म में तुम ही पाला माया अगर न पोहे तिन को रंग रते गुण गावनिया क्या गुण तेरे आख समाली मंत्र अंतर तुद नजर निहाली तू मेरा मी साजन मेरा स्वामी तुद बिन अवर न जाननिया जिसको तू प्रभया सहाई तिस तत्ती भाव न लगे कई तू साव सरन सुख दाता सत्संग जप टावनिया तू ऊंच अताहो अपार अमोला तू साचा साव दास तेरा गोला तू मीरा साची ठगराई नानक बल बल जावनिया माज महला पंजवा नित दोई संभालिए मूल न मनो विसारिये रहो सांता संगत पाइये जित जमके बंधे न जाइये तो सहर का नाम ले।

संत साधक सगल मनोरथ पूरे कट कट एक वरदा जल तल महियल पूरे पाप नासन सेवे आप पितर संतन की दूर सब।

साधु संग परापत नानक रंग मानन हर जेठ रंगी ला तिस तने जिसके पागम धन असाड़त बंदा तिस लगे हर ना हो न जिन्ना पास जग जीवन परखते।

बहन बिहानी पछतानी उठ चली गई निराश, जिनको साधु पेटिए सो धर गए होए खलास, कर कृपा प्रभ अपनी ते दर्शन होए प्यास, प्रभ तुझ बिंदु जा को नहीं नानकी अरदास, असाढ़ सहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण निवास, सावन सरसी कावनी चरण कमल स्यो प्यार, मानतरता सच रंग इको नाम अदार, बिखिया रंग कूड़ा विहार दिसन सबे सार, अमृत बूंद सहावनी मिल साधु पी बने हर, बांटन प्राप संग मोल्या समर्थ पर पार, हर मेने नो

पोग बिचन कोई कर सके किस्त रोवे रोज गीता कछु न होवी लिखिया तुर संजोग बड़ भागी मेरा प्राण मिले ता उतरे सब योग नानक प्रभ राख ले मेरे साहब बंदी मोचे कतक होवे सासंग बिनसे सबे सोच मगर माहे सहंदिया हर पिर संग बैठड़िया तिनकी शोभा क्या गणी जा साहब मिलड़िया तन मन मोलिया राम स्यों संग साध सह लड़िया साध जना ते बाहरी से रहन अकेलड़िया तिन दुख न कबहु उतर से जमके बस पड़िया जिन्नी राव्या प्रभ अपना से दिस नित खड़िया रतन जवेहर लाल हर कंठ तिन्ना जड़िया नानक बाशे धूल तिन प्रभ शरणी दर पड़िया मगर प्रभ आराधना बोहन जन्मड़िया पोखत कारना व्यापई कंठ मिलिया हर ना हो मन बेदिया चरनार वेद दर्शन लगड़ा साहू ओट गोविंद।

भागमजन सग साधुआ तूड़ी कर शन हर का नाम त्याए सुन सब नानो कर दैन जन्म करम मल उतरे मन ते जय गमन काम क्रोध ना मोहिए।

पुनी बड़ पागनी बर पाया हर राए, मिल सहिया मंगल गावही गीत गोविंद अलाए। हर जेहा अवर ना दिस ही कोई दूजा लवे न लाए, हालत पालत सवारियन नह चल दितियन जाए। संसार सागर ते रखियन बहुत न जन्मे ताए, जिहवा एक अनेक गुण तरे नानक चरनी पाए। फल गुण नित सलाही है जिसनो तिल ना तमाए, जिन जिन नाम ते आया तिनके काज सरे। हर गुर पूरा।

एक तरह मान दिवस मुहूर्त पले जिसको नदर करे नानक मंगे दर्श दान कृपा करो हरे माज महला पंजमा दिन रहनी को अहंकार सतगुर प्रसाद सेवी सतगुर अपना हर सिमरी दिन सब रैन आप त्याग शरणी पवा मुख बोली मिठड़े बैन जन्म जन्म का

मरण जीवन आराधना सवना का आधार, ससरे पैये तिस कंध की बड़ा जिस परवार, ऊंचा अगम अगाध बोध किश अंत न पार वार, सेवा सा तिस भाव सी संता की होई सार, दीना नाथ दयाल दे पत तुधार निहार, आदि जगा दी रखदा सच नाम करतार, कीमत कोई न जानी को नाही तोलन हार, मंत्र अंतर वासर।

पानी थाओ, हर ओट गई मन अंदर जप जप जीवा नाओ, कर कृपा प्रभ अपनी जन तूड़ी संग समाओ, ज्यों तू राखे त्यों रहा

0: बाजो बोलना यो जीवत मरना
1: नानक हुकम पछाण के तो खसमे मरना मिलना नानक हुकम पछाण के तो खसमे मिलना महला दूजा दिसे सुनिए जानिए साओ ना पाया जाए रोहला टुंडा अंदला क्यों गल लगे ताए पै के चरण कर भाव के लोयन सत करे नान कहे सियाणिए एवो कंत मिलावा होए पौड़ी सदा सदा तू एक है तुझ दूजा खेर लचाया होमे गर्भ पाए के लोभ अंतर जनता पाया ज्यों पावे तू रख तू सब करे तेरा कराया एक ना बख्शे मेल लहे गुरमति तुदे लाया ए खड़े करे तेरी चाकरी बिन नामे होर ना पाया होर कार बेकार है एक सच्ची कारे लाया पोत कलात कुटंब है एक लपत रहे सो तुद पाया ओ अंदरों बारों निर्मले सच्चे नाए समाया श्लोक महला पहला सोयने के पर्वत गुफा करी के पानी प्याल कै बिच धरती कै आकाशी उधर हां सिर भार पुर कर काया कपड़ पहरा धोवा सदाकार बग्गा रता पीला बग्गा रता पीला काला बेदा करी पुकार होए कचील रहा मल धारी दुरमत मत विकार ना हो नाम है ना होवा नानक शब्द विचार महला पहला बस्तर पखाल पखाले काया आपे संजम होवे अंतर मैल लगी नहीं जाने बाहर मल मल धोवे अंधा भूल पिया जम जाले बस्त पराई अपने कर जाने होमे बिच दुख काले नानक गुरमुख होमे टुटे ता हर हर नाम ते आवे नाम जपे नामो राधे नामे सुख समावे पौड़ी काया हन संजोग मेल मिलाया तन ही किया वियोग जन उपाया मूर्ख भोगे भोग दुख सवाया सुखों उठे रोग पाप कमाया हरखों सोग वियोग उपाय खपाया मूर्ख गंत गणाए झगड़ा पाया सतगुर हाथ नवेड़ झगड़ चुकाया करता करे सो होग ना चले चलाया श्लोक महला पहला कूड़ बोल मुरदार खाए अबरी नो समझावन जाए मुठा आप मुहाए साथे नानक ऐसा आगू जापे महला चौथा जिस दे अंदर सच है सो सच्चा नाम मुख सच अलाए ओ हर मार्ग आप चलदा होरना नू हर मार्ग पाए जे अग्गी तीर्थ होए ता मल लहे छप्पड़ नाते सगमी मल लाए तीर्थ पूरा सतगुरु जो अंदर हर हर नाम त्याए ओ आप छुट्टा कुटंब स्यो दे हर हर नाम सब श्रेष्ठ छुड़ाए जन नानक तैस बरहारने जो आप जपे अवरा नाम जपाए पौड़ी एक कंद मूल चौन खाहे बन खंड बासा एक भगमा बेस करी खिरे फिरे जोगी सन्यासा अंदरों तृष्णा बहुत साधन भोजन की आसा व्यर्था जन्म गवाए ना गिरही ना उदासा जम काल सिरों ना उतरे त्रैबद मनसा गुरमती काल ना आवे नेड़े जां होवे दासन दासा सच्चा शब्द सच मन कर ही माहे उदासा नानक सतगुर सेवन अपना ते से आसा ते निराशा श्लोक महला पहला जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत नानक नाओ खुदाए का दिल हशे मुख लेहो अवर दवाजे दुनी के झूठे अमल करे हो महला पहला ना हो ना ही ता क्या आखा क्यों ना ही क्या होवा कीता करना कहया कथना भरया भर भर धोवा आपना बुझा लोक बुझाई ऐसा आगू होवा ਨਾਨਕ ਅੰਧਾ ਹੋਇ ਕੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹੇ, ਸਭ ਸਮੋਹਾਏ ਸਾਥੇ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਪਾਹੇ, ਸੋ ਐਸਾ ਆਗੂ ਹੋਵਾਂ। ਨਾਨਕ ਪੌੜੀ, ਮਹਾਰੁੱਤੀ ਸਭ ਤੂੰ ਕੜੀ ਮੂਰਤ ਵਿਚਾਰ, ਤੂੰ ਗਣਤੇ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਸੱਚੇ ਅਲੱਖ ਅਪਾਰ। ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਜਾਂ ਆਖੀਏ, ਜਿਸ ਲੋਭ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰਾ, ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ, ਜਿਸ ਲੱਭ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰਾ, ਨਾਉ ਪੜੀਏ ਨਾਉ ਬੁੱਝੀਏ, ਗੁਰਮਤੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਧਨ ਖੱਟਿਆ, ਭਗਤੀ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਮਨ ਮੰਨਿਆ, ਦਰ ਸੱਚੇ ਸਚਿਆਰਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਉ ਪੁਰਾਣ ਹੈ ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਅਪਾਰਾ, ਸੱਚਾ ਸਾਹ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੋਰ ਜਗਤ ਬਣਜਾਰਾ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮੇਹਰ ਮਸੀਤ